0: लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: आइए आज इस बात पर विचार करें विश्व रक्तदान दिवस पर। आज का विचार मानवता के इसी सबसे बड़े कर्तव्य को समर्पित है। रक्तदान किसी को जीवन का सबसे अनमोल उपहार देने जैसा है। हमारी रगों में बहता लहू जब किसी और की सांसों की डोरी बनता है तो इंसानियत मुस्कुरा उठती है। विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन रक्त का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपका मात्र एक यूनिट रक्तदान किसी तड़पते हुए परिवार को उसकी खुशियां वापस लौटा सकता है। तो आइए आज ये संकल्प लें कि हम नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे। याद रखिए, रक्तदान महादान है। इसे अपनी आदत बनाइए और किसी के जीवन का नया सवेरा बनिए।
0: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें WhatsApp पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे आज 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अनुपमा देशपांडे की आवाज में संत मीराबाई की रचना।

श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में सुनिए एक विशेष सूचना। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के यूट्यूब मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे आज 14 जून को अपने अपने मोबाइल

फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़े, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। रविंदर रावल की रचना लीजिए, सुनिए अशोक खोसला के स्वर में।

श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में एक विशेष सूचना सुनिए। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube मंच के माध्यम से एक साथ सर्वाधिक लोगों को ऑनलाइन योग सत्र में सहभागी बनाना है। इस विशेष आयोजन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर योग सत्र का लिंक प्राप्त होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे आज 14 जून को अपने अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सत्र में जुड़ें, क्योंकि प्रत्येक पंजीकृत डिवाइस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा सामाजिक संगठन 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। तो आइए हम सभी इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने और योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें कुमड़े की खेती के संदर्भ में। कुमड़े की खेती के लिए उष्ण जलवायु बहुत ही अच्छी होती है। यदि जमीन में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तो कुमड़े को

0: लगभग सभी प्रकार की जमीनों में आसानी से उगाया जा सकता है। अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए शर्त यह है कि आप कुमड़े की अच्छी किस्मों का प्रयोग करें। कुमड़े की सीओ एक एक उन्नत प्रजाति है। इस प्रजाति का फल बड़ा आता है तथा बीज की मात्रा भी कम होती है। हमारे द्वीप समूह में कुमड़ा साल भर उगाया जा सकता है। अच्छी प्रकार से खेत की तैयारी करने के लिए 3 से 4 बार जमीन की जुताई करें तथा मिट्टी को अच्छी प्रकार से जोत लें। 1 हेक्टेयर जमीन में कुमड़े की बुआई के लिए 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जहां तक बीज की बुआई का सवाल है, इसकी खेती करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम से कम 3.5 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखी जानी चाहिए। किसान भाइयों, कुमड़े के बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं तथा एक स्थान पर 3 से 4 बीज लगाएं। कुमड़े की खेती करते समय 1 हेक्टेयर खेत के लिए 20 टन गोबर की खाद, 100 किलोग्राम यूरिया व 350 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट का प्रयोग करें। खेत की तैयारी करते समय गोबर की खाद को भली प्रकार से खेत में मिला दें। सिंगल सुपर फास्फेट की सारी मात्रा तथा यूरिया का आधा भाग बुआई के समय जमीन में मिला दें। यूरिया का जो शेष आधा भाग बच जाता है, उसे 2 बार में प्रयोग में लाना चाहिए। उर्वरक देते समय ध्यान रहे कि उर्वरक पौधे से कम 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर डाला जाए। वैसे आपकी खेत की मिट्टी की जांच से ही इस बात का पक्का पता चल पाएगा कि आपकी खेत में कितने उर्वरकों की मात्रा देनी है। किसान भाइयों, पौधे में अंकुरण हो जाने के बाद सिंचाई करें। वैसे हमारे इन द्वीपों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यदि मौसम सूखा है, लंबे समय तक बारिश नहीं होती है और आपके पास सिंचाई का साधन उपलब्ध है, तो 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई जरूर करें। जब पौधे में 3 या 4 पत्तियां आ जाए, तो उस समय एक स्थान में 1 या 2 पौधे को छोड़कर बाकी कमजोर पौधों को निकाल दें। शुरू शुरू में इस फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए और आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, 4 से 5 महीने में फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब फल की सतह पर सफेद रंग का धूल पूर्ण रूप से फैल जाए, तब ये तोड़ने लायक हो जाता है। ऐसे फलों को काफी दिनों तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। किसान भाइयों, कुमड़े में कुछ एक बीमारियों का भी प्रकोप होता है। कुमड़े में डाउनी मिल्ड्यू नामक फफूंदी रोग का प्रकोप पाया जाता है। इस बीमारी में पत्तियों की निचली सतह पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग से पौधे की रक्षा हेतु 1% बोड़ो मिश्रण अथवा 0.1% कैराथेन नामक फफूंद नाशक रसायन का प्रयोग किया जा सकता है। रोगों के अतिरिक्त कुमड़े में कीड़ों का भी प्रकोप होता है। इसमें लगने वाले कीड़ों में फल मक्खी व रेड पम्पकिन बीटल सबसे प्रमुख हैं। इन कीड़ों को देखते ही इनके नियंत्रण के भी उपाय किए जाने चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप विशेषज्ञों की सलाह लेकर वैज्ञानिक रीति से कुमड़े की खेती करेंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर पाएंगे।
1: श्रोताओं, ये था एग्री टिप्स।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा।

0: न्यूज बुलेटिन।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सोमवार 15 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी मंगलवार 16 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान के लिए सिंधु जलियान आज सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानिकोबार की यात्रा पर शुक्रवार 19 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शनिवार 20 तारीख को शाम 4 बजे कानिकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। ननकौरी होते हुए कैम्बल बे के लिए सिंधु जलियान मंगलवार 16 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और गुरुवार 18 तारीख को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप के लिए एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप के लिए एमवी कमोटा आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल सोमवार 15 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा।

एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सोमवार 15 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानीचंगा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी हडबे शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और परसों मंगलवार 16 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी जॉली बॉय कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। श्रोताओं, ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार श्रोताओं, आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सोनिया, लेकर आई हूँ प्यार और जज्बातों से भरपूर रिश्तों की डोर से बंधे ऐसे गीत जो रिश्तों में प्यार की मिठास घोल दें।

श्रोताओं, रिश्ता वो आईना है जो हमारी पहचान देता है और हर खुशी और गम में साथ निभाने का सम्मान देता है।

0: शतों रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से बनते हैं और सच्चाई से जीवन भर चलते हैं। इसी सुविचार के साथ अब कार्यक्रम से चाहते हैं इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी सोनिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान की 269वीं कड़ी।

बाली सुग्रीव युद्ध हुआ। बलशाली बाली के सामने सुग्रीव टिक नहीं सका। वो भागकर श्रीराम की शरण जाता है। उन्होंने उसको उत्साहित कर दूसरी बार फूलों की माला पहनाकर भेजा, ताकि समान दिखने वाले दोनों भाइयों में उसे पहचाना जा सके। दूर पेड़ की आड़ से श्रीराम बाली की छाती में वाण मारकर उसका वध कर देते हैं। अपने अंतिम क्षणों में श्री राम को समीप पाकर वो प्रश्न करता है, हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मैं वैरी और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों कर हो गया? श्री राम का उत्तर है, हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाले को मारने से कोई पाप नहीं होता।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 269वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और श्रीकांत पारगांवकर व संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने व भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक

हो सकती है, जिसके कारण मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 जून तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकारा होंगी फरीदा खानम। 9 बजे आप सुन सकेंगे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल जगत, जिसमें विश्व रक्तदाता दिवस पर चर्चा, भारत की वीरांगना महालक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई पर चर्चा तथा योग और हम विषय पर जानकारी भी आप सुन सकेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर विश्व मोहन भट्ट का गिटार और तरुण भट्टाचार्य का हिंदुस्तानी शैली में संतूर वादन होगा। 10 बजे आप लुत्फ उठा पाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। जनता जंक्शन कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11 बजे। 11:30 पर गजल कार्यक्रम आप सुनेंगे। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे पुराने फिल्मी गीत और विश्व रक्तदाता दिवस पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में भी विश्व रक्तदाता दिवस पर चर्चा और फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर फनकारा होंगी ताहिरा सईद। 1:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार, जिसमें विश्व रक्तदाता दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर चर्चा भी होगी। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन 100.9 MHz FM पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे गीत लहरी। एल्बम टाइम्स होगा 3 बजे और 3:30 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों के विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो का। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें विश्व रक्तदाता दिवस पर चर्चा और पेरका गांव के सेंट पारल्स चर्च के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत भी आप सुन सकेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। शाम 4:40 पर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। बहारों की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे 4:45 पर। संध्या 6 बजे व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा संगीत संगिनी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स और विश्व रक्तदाता दिवस पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा के अंतर्गत पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 1.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 86% और न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.2 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 4:55 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:44। अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.govin पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

0: श्रोताओं आपको फिर से बता दें, सवेरे 7:15 पर देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का आप आनंद ले पाएंगे व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 10 बजे आप लुत्फ उठा पाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 8 बजे। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। फ्रांस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वहीं कल से प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा पर भी जाएंगी। ब्रिक्स देशों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की। कालाटांग और शोलबे में पर्यटन कैलेंडर के अंतर्गत आयोजित बर्ड वॉक और मैंग्रोव वॉक में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

और शहीद द्वीप, नॉर्थ बे और डिगलीपुर में आयोजित अस्मिता साइकिलिंग लीग ने महिला सशक्तिकरण को नई गति प्रदान की। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड गेफ्रे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, एल्प्स मैरिटाइम्स प्रीफेक्चर के सेक्रेटरी जनरल पेट्रिक ओमोसू एडेबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथाउ, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बिनॉयट श्नाइडर शामिल थे। वहीं प्रधानमंत्री की एक और देश स्लोवाक गणराज्य की यात्रा से पहले राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा दोनों देशों के लिए सहयोग के नए द्वार खोलेगी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सोमवार को ब्रातिस्लावा में श्री मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक है। फ्रांस की यात्रा के बाद श्री मोदी कल से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन से जारी ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कल संपन्न हो गया। सम्मेलन में घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि व्यापार और डिजिटल कृषि पर निर्णयों को शामिल किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक कृषि उत्पादन में तकरीबन 42% का योगदान ब्रिक्स देशों का है। सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इनमें प्राकृतिक और सृजनात्मक कृषि पर संयुक्त शोध के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क बनाना, कृषि में यंत्र बुद्धि और डिजिटल तकनीक लाने के लिए ब्रिक्स डिजिटल नेटवर्क की स्थापना करना, बीज और परंपरागत बीज किस्मों के संरक्षण से जुड़े किसान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक मंच की स्थापना करना और ब्रिक्स एग्री एंड नेटवर्क की स्थापना करना शामिल है। श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार किसानों के लिए प्रति बोरी डीएपी 1,350 रुपये और यूरिया 266 रुपये उपलब्ध कराना जारी रखेगी। इसका अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त N-32 विमान के 5 बहादुर जवानों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने अपना कर्तव्य निर्वाहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके साहस और सेवा को राष्ट्र सदैव गर्व और कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। श्री सिंह ने पीड़ित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ खड़ा है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में ऑनलाइन फर्जी घोषणाएं और विज्ञापनों से लोगों को सतर्क किया है। मंत्रालय ने ऐसी घोषणाओं और विज्ञापनों से सावधान रहने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय का एकमात्र प्रमाणिक पोर्टल kmy.gov.in है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पर्यटन और साइकिलिंग। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने पर्यावरण एवं वन विभाग और दक्षिण फाउंडेशन उत्तर वंडूर के सहयोग से पर्यटन मेला कार्यक्रम कैलेंडर 2026-27 के हिस्से के रूप में कल कालाटांग में द्वीप पक्षी यात्रा और शोलबे 19 में आइलैंड मैंग्रोव वॉक का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना, द्वीपों की जैव विविधता के बारे में

जागरूकता पैदा करना और प्रकृति आधारित गतिविधियों में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। आइलैंड बर्ड वॉक में कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि आइलैंड मैंग्रोव वॉक में लगभग 50 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को पक्षी संरक्षण, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता संरक्षण और सतत पर्यटन प्रथाओं के बारे में जागरूक किया गया। पर्यावरण एवं वन विभाग, दक्षिण फाउंडेशन, स्थानीय पंचायतों और उत्साही प्रतिभागियों के सहयोग ने दोनों कार्यक्रमों के सुचारू और सफल संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जनता के बीच पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया। द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर कल अस्मिता साइकिलिंग लीग का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक महिला साइकिल चालकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य महिलाओं में खेल भावना, फिटनेस और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:30 बजे नॉर्थ बे बम्बूफ्लैट में हुई, जहां सूचना, प्रचार एवं पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी ने प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सुबह 9:30 बजे डिगलीपुर में आयोजित साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारम्भ सहायक आयुक्त डिगलीपुर ने किया। दिन का अंतिम आयोजन दोपहर 3:30 बजे शहीद द्वीप में किया गया, जिसमें पंचायत प्रधान, पंचायत प्रमुख और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के खेल आयोजन महिलाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली साइकिल चालकों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग की महिला प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आयोजन के हिस्से के रूप में डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर द्वारा कर्मटांग समुद्र तट पर एक बीच योग शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन, सकारात्मकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभागियों द्वारा खुले आसमान के नीचे समुद्र के किनारे विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया गया। इस दौरान प्राणायाम सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए श्वास संबंधी प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर की चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद डॉक्टर प्रियंका इकबाल और योग प्रशिक्षक मंगत भगत ने प्रतिभागियों को योग को अपने दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में आयुष विंग स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने दक्षिण अंडमान के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर फ्लैश मॉब कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये कार्यक्रम बम्बूफ्लैट पुलिस स्टेशन के सामने और गोलघर एवं भातुबस्ती जंक्शन पर आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का नेतृत्व योग प्रशिक्षकों और स्वयंसेवकों की टीम ने किया, जिन्होंने लयबद्ध गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाते हुए योग का प्रदर्शन किया। यह पहल स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग के विषय को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फ्रांस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वहीं कल से प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा पर भी जाएंगे। ब्रिक्स देशों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की। कालाटांग और शोलबे में पर्यटन कैलेंडर के अंतर्गत आयोजित बर्ड वॉक और मैंग्रोव वॉक में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और शहीद द्वीप, नॉर्थ बे और डिगलीपुर में आयोजित अस्मिता साइकिलिंग लीग ने महिला सशक्तिकरण को नई गति प्रदान की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी।

देश के जवान दिन रात हर मौसम और हर कठिन परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। जब उनसे उनके दिल की कहानी पूछी जाती है तो वे बस यही कहते हैं कि चिट्ठियों में महसूस होती है माँ की दुआ। दूर रहकर भी दिल रहता है घर के पास सदा। सरहद पे खड़े हैं हम मुस्कुराते हुए, देश की हिफाजत में जीते हैं हर घड़ी यहाँ। वतन से बढ़कर नहीं है कोई अपना जहां।

दोस्तों, हम अपने देश से कई कारणों से प्यार करते हैं, जिसमें अपनेपन की भावना, उपलब्धियों पर गर्व, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता शामिल है। इसलिए ये जो देश के साथ हमारा बंधन जुड़ा है, वो कभी भी टूट नहीं सकता।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

दोस्तों, सफ़र लंबा हो तो हिम्मत बढ़ानी पड़ती है, कामयाबी के लिए मेहनत दिखानी पड़ती है। यूं ही नहीं मिल जाता मुकाम किसी को, यूं ही नहीं मिल जाता मुकाम किसी को, ख्वाबों की खातिर नींद गंवानी पड़ती है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शबाना।

0: पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में ये था मोहरा फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इंदिवर ने व संगीत से सजाया था विजू शाह ने। दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता दें, आज विश्व रक्तदाता दिवस है, जो हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना और लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, रक्तदान महादान है। आपका एक छोटा सा योगदान किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। विश्व रक्तदाता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वैच्छिक रक्तदान समाज के लिए एक अमूल्य सेवा है और इससे अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए रक्तदान का दीप जलाएं, जीवन में खुशियां लाएं, एक बूंद से आशा जागे, किसी की सांसें लौट आए।
1: सुनो सुनो, अपने कानों में तेल डालकर सुनो कि बंदा अपने प्यारों को आदाब बजा लाता है, अपनी अम्मा और अपनी जोरों के सर पे हाथ रख के अपनी कसम दोहराता है।
2: क्या?
1: ये

0: बोल गए चोर बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे नहीं।

0: टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे। जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

है लानत चोर बाजारी, ये दौलत है बीमारी, है लानत चोर बाजारी, अरे छोड़ दो मारा मारी और फेंक।

0: श्रोताओं, अभी आपने खून पसीना फिल्म का ये गीत सुना जिसे गाया था किशोर कुमार और साथियों ने। बोल अनजान के थे, वह धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें, तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पे कॉल करें।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों, लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1 लाख दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए FCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
10: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है।

समीर का लिखा एवं आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया हुआ भी आपने बारूद फिल्म का ये गीत सुना। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। श्रोताओं और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं इम्तिहान फिल्म का गाना कुमार सानू और बेला।

0: दोस्तों, जो आज संघर्ष से घबराता है वो कल सफलता का स्वाद नहीं पाता है। कदम बढ़ाते रहो विश्वास के साथ, क्योंकि समय हर मेहनत का फल जरूर लौटाता है। इस प्यारे से विचार के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

0: चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार

0: वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected

इस कार्यक्रम में आज की हमारी फनकारा हैं फरीदा खानम। तो पेश है फरीदा खानम की आवाज़ में चंद गज़लें।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आज की हमारी फनकारा थी फरीदा खानम।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूं। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूं जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल जगत।
5: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, सुपर

संडे और सुपर सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी रीता दीदी, आपके पसंदीदा बाल जगत कार्यक्रम में। दोस्तों, आज 14 जून है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज कौन सा खास दिन है? सोचिए सोचिए मेरे दोस्तों। चलिए एक हिंट दे देती हूँ। यह हमारे शरीर के उस लाल रंग के लिक्विड से जुड़ा है जो 2400 घंटे हमारे अंदर दौड़ता रहता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस। अब आप सब सोच रहे होंगे कि हम तो बच्चे हैं, हम भला खून कैसे दान कर सकते हैं और यह दिन हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, आपके इन्हीं सारे क्यों और कैसे का जवाब जानेंगे आज।

प्यारे दोस्तों, एक बात बताओ, जब आप साइकिल से गिरते हो या घुटने पर छोटी सी खरोंच आती है तो वहां से क्या निकलता है? बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, लाल रंग का खून। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह लाल रंग का लिक्विड कोई मामूली चीज नहीं है? यह हमारे शरीर का वह सुपर हाईवे है जिसके जरिए हमारे शरीर के हर हिस्से को जिंदा रखने का सामान मिलता है। तो रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही मजेदार है दोस्तों। दोस्तों, कहानी है टिंकू की। टिंकू आप ही की तरह 9 साल का एक शरारती बच्चा है। एक दिन वह पार्क में फुटबॉल खेल रहा था, जोश जोश में वह गिर गया और उसके घुटने पर गहरी चोट लग गई। अरे बाप रे, बहुत सारा लाल रंग खून बहने लगा। डॉक्टर अंकल के पास गए तो उन्होंने कहा, टिंकू के शरीर से खून कम हो गया है, उसे तुरंत नया खून चढ़ाना पड़ेगा। टिंकू के पापा घबरा गए। तभी अस्पताल में खड़े एक अजनबी अंकल आए और बोले, चिंता मत कीजिए, मेरा ब्लड

ग्रुप टिंकू से मिलता है। मैं अपना खून देता हूँ। अंकल ने खून दिया और हमारा टिंकू दो दिन में फिर से मैदान में फुटबॉल खेलने लगा। तो मेरे दोस्तों, जो खून टिंकू की नस नस में दौड़ रहा है वह क्या है? हमारा रक्त यानी ब्लड हमारे शरीर की क्यूरियर सर्विस की तरह है। जैसे अमेज़न ज़ोमैटो वाले अंकल घर पर सामान पहुंचाते हैं, वैसे ही खून हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ताकत देने का खाना पहुंचाता है। क्या आपको पता है कि हम बाजार से प्लास्टिक के खिलौने, चॉकलेट्स, गाड़ी सब खरीद सकते हैं ना? लेकिन विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, फिर भी आज तक वैज्ञानिक फैक्ट्रियों में असली खून नहीं बना पाए दोस्तों। जी हाँ, खून सिर्फ और सिर्फ भगवान ने हम इंसानों के लिए शरीर में ही बनने की शक्ति दी है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी बीमार या चोट लगे व्यक्ति को खून की जरूरत है तो वह किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, वह केवल कोई दूसरा इंसान ही दान करके दे सकता है। इसीलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों, हर साल 14 जून को पूरी दुनिया में यह दिन मनाया जाता है। यह एक स्पेशल डे है जिसमें हम रक्तदाताओं को थैंक यू बोलते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे पता है रेडियो सुन रहे कई बच्चे अभी अपने मम्मी पापा से कह रहे होंगे, मम्मी मैं भी कल जाकर अपना खून दान करूंगा और सुपर हीरो बन जाऊंगा। अरे वाह, आपका जज्बा तो बहुत अच्छा है मेरे बच्चों, लेकिन सुपर हीरो बनने की कुछ शर्तें भी होती है ना? हमारे देश में रक्तदान वही कर सकता है जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो, यानी आपके बड़े भाई बहन या माता पिता, जिनका वजन कम से कम 45 किलो होना चाहिए और जो बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हो। और हाँ मेरे दोस्तों, खून देने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, कुछ दिनों बाद नया खून फिर से बना लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी 18 साल से छोटे हो ना, तो आपका मिशन क्या है जान लीजिए। आपका मिशन है जागरूकता फैलाना। तो आज से आप सभी पापा जब भी ऑफिस से आए या मम्मी काम से फ्री हो जाए तो उनसे पूछना, मम्मी पापा क्या आपने कभी रक्तदान किया है? उन्हें बताना कि 14 जून को ब्लड डोनर डे है और उन्हें रक्तदान करने के लिए मोटिवेट करना। कई बड़े लोग सुई से डरते हैं, उनका डर भगाना आपका काम है। और खुद से एक वादा करो दोस्तों, जब आप बड़े हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे, तो हर साल रक्तदान करोगे। करोगे ना?

नहीं दोस्तों, हमारे हजारों लाखों वर्षों का इतिहास जिसका ऋणी है, रानी वीरांगनाओं का सम्मान हम एक दिन एक शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अद्भुत स्त्रियां हाथों में लेखनी ले तो वेदों की रचना कर देते हैं और तलवार ले तो धरा का मानचित्र ही बदल देते हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं दोस्तों, किस्सा कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा।

किस किस के नाम हम गिना सकते हैं, क्योंकि इतनी वीरांगनाएं हमारे देश में जनी हैं। इस वीर धरती ने दो चार वीरांगनाएं जनी हो तो मैं उनके नाम आप सभी को बताऊं। यहाँ तो पग पग पर नारियों की शौर्य गाथा सुनने को मिलती है ना। तो मैं भारतवर्ष की सभी अद्भुत स्त्रियों को नमन करने के लिए उस वीर रानी का सहारा लूंगी, जिसने आने वाली सदी के लिए औरतों का श्रद्धा और शौर्य के परम शिखर पर बिठा दिया। भारतवर्ष एक महान उत्सव की तरह है। यहाँ मिट्टी भी सोना है और दिलों के दरवाजे हर मेहमानों के लिए खुले हैं। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर सैतानी इरादे, और अत्याचार के आगे जब घायल हो रही थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्व से उठ खड़ी हुई हमारी रानी महारानी लक्ष्मीबाई। नन्हे दोस्तों, आपने एक ऐसी माँ के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने अपनी पीठ पर अपने छोटे से बच्चे को बांधा, दोनों हाथों में तलवार ली, घोड़े की लगान को दांतों से दबाया और अकेले ही दुश्मनों की पूरी सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म बनारस में हुआ था और बचपन में ही उन्हें प्यार से मन्नू या छबीली कहा जाता था। जब मन्नू छोटी थी तो वे दूसरी लड़कियों की तरह गुड़ियों से नहीं खेलती थी। उसके खिलौने थे नकली तलवार, ढाल और तीर कमान। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सीख ली थी। बड़ी होकर मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। दोस्तों, उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज बहुत चालाक थे। वे धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों को धोखे से हड़प रहे थे। तब झांसी के राजा का निधन हो गया। अंग्रेजों के गवर्नर ने कहा, अब झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। लेकिन अंग्रेज यह भूल गए थे कि झांसी की गद्दी पर कोई कमजोर राजा नहीं, बल्कि एक शेरनी बैठी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी निडरता से अंग्रेजों के सामने दहाड़ते हुए एक ऐतिहासिक वाक्य कहा था, जो आज भी इतिहास में अमर है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी एक अनोखी सेना बनाई, जिसमें पुरुषों के साथ साथ झांसी की बहादुर महिलाओं को भी युद्ध की ट्रेनिंग दी। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया तो रानी ने अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर किले की ऊंची दीवार से अपने घोड़े बादल के साथ नीचे कूद गई और दुश्मनों को चीरती हुई सुरक्षित बाहर निकल गई। किले से निकलने के बाद भी रानी चुप नहीं बैठी। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा किया और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अंत में रानी का प्रिय घोड़ा बदल चुका था और नया घोड़ा एक नाले के पास आकर अड़ गया। अंग्रेज सैनिकों ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया। रानी के शरीर पर कई घाव लगे थे, खून बह रहा था, लेकिन वे अंतिम सांस तक लड़ती रही। उन्होंने अकेले ही कई अंग्रेज सेनाओं को मौत के घाट उतार दिया। जब रानी को लगा कि अब अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मेरा शरीर इन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उनके वफादार सैनिकों ने उन्हें पास के एक साधु की कुटिया में पहुंचाया, जहां उन्होंने वीरगति प्राप्त की। साधु ने तुरंत अपनी कुटिया की लकड़ियों से रानी का अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे अंग्रेज उनके पवित्र शरीर को छू तक ना सके। 18 जून का यही दिन पूरी दुनिया में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। मात्र 29 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इस कहानी से हमें तीन बड़ी बातें सीखने को मिलती है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें डरकर भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं होती, रानी लक्ष्मीबाई जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमें हमेशा अपने देश से प्यार करना चाहिए और इसकी रक्षा के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। एक खूबसूरत कथन है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुड़ी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगे को करने के सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिज्ञा रही, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक

श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। एक बेटी को बेटे से कम कैसे कहा जा सकता है? जब बेटी खड़ी होती है तब विजय बड़ी होती है। मौत तक लड़ेंगे, जीत तक लड़ेंगे, यही थी रानी लक्ष्मीबाई की जंग की जुबान।

0: विजयी भव।
1: नन्हे दोस्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो आपको बिना गूगल किए पुरानी और मजेदार कहानियाँ सुना देता है? हाँ, सही पहचाना, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी या घर के बड़े बुजुर्ग। चलिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मीनू और उसके दादू की। मीनू 7 साल की है और उसके दादू 70 साल के। दादू की आँखें थोड़ी कमजोर है और वे धीरे धीरे चलते हैं। एक दिन मीनू ने देखा कि दादू अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं। मीनू दौड़कर गई, चश्मा ढूंढकर लाई और बड़े प्यार से दादू को पहना दिया। दादू के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और

ने मीनू को ढेर सारी चॉकलेट्स दी। मीनू को समझ आ गया कि दादू को खुश करना दुनिया का सबसे आसान और प्यारा काम है। बच्चों, जैसे जब आप छोटे थे तब आपके मम्मी पापा और दादा दादी ने आपकी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, वैसे ही जब हमारे बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें हमारे प्यार और सहारे की जरूरत होती है ना? बच्चों, बुजुर्गों का शरीर भले ही उम्र के साथ थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन उनके पास अनुभव का खजाना होता है। वे हमारे घर की छतरी की तरह होते हैं, जो हमें हर मुसीबत और धूप से बचाते हैं। वे हमें अच्छे संस्कार सिखाते हैं। जब मम्मी पापा कभी डांटते हैं तो हमें बचाने वाले सबसे पहले दादा दादी ही होते हैं, है ना? जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, उनकी आंखें कमजोर हो जाती है, कान से थोड़ा कम सुनाई देने लगता है और वे जल्दी थक जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। आइए सीखते हैं कि हम अपने घर और आस पड़ोस के बुजुर्गों के साथ कैसे एक अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले अपने दादा दादी नाना नानी के पैर छूकर या हाथ जोड़कर नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहे, जिससे पूरा दिन खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, अगर दादू या दादी अपनी बात भूल जाते हैं या कोई कहानी बार बार सुनाते हैं तो उनकी बात को बीच में ना काटे, प्यार से मुस्कुराकर उनकी बातों को सुने। पानी का ग्लास लाकर दे, उनका चश्मा ढूंढ कर दे, अखबार लाकर दे, उन्हें दवाइयां समय पर खिलाएं। ये छोटे छोटे काम उन्हें बहुत खुशियां देते हैं। मोबाइल या टीवी पर गेम खेलने के बजाय रोज कम से कम 15-20 मिनट अपने बुजुर्गों के साथ बैठे, उनसे अपने बचपन के किस्से पूछे, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि कुछ बुजुर्गों को ऊंचा सुनाई देता है, इसीलिए जब उनसे बात करें तो चिल्लाएं नहीं, बल्कि उनके पास जाकर साफ और तमीज से बात करें। बच्चों, आज हम सब यहाँ से एक बहुत ही सुंदर आदत सीख कर जाएंगे। आज का होमवर्क है आप सभी का। आज जब भी आप फ्री होगे या अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे या खेलकर वापस आओगे, तो सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों को एक जादुई झप्पी जरूर दीजिएगा। उनके पास बैठकर पूछिए, दादू दादी या नाना नानी, आज आपका दिन कैसा रहा? और रात को सोते समय उनसे एक प्यारी सी कहानी सुनने की जरूर जिद करोगे, करोगे ना दोस्तों? नन्हे दोस्तों, जानकारियों के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी होता है ना? जानकारियां तो आप हर रविवार जानते ही हो अपनी दीदी से, साथ ही साथ स्वस्थ रहने की कुछ बातें भी तो जाननी जरूरी है ना? तो चलते हैं योगर हम। दोस्तों, योग सुनने में ही लगता है ना बोरिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। योग कोई बोरिंग कसरत नहीं है, बल्कि यह तो एक सुपर पावर की तरह है। योग का मतलब है जुड़ना। जैसे हम दो ब्लॉक को आपस में जोड़ते हैं ना, वैसे ही हमारे शरीर में श्वास और दिमाग को आपस में जोड़ने का काम करता है योग। योग हमारे शरीर और मन पर जादू की तरह काम करता है। योग करने से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है और हम दौड़ने, कूदने और खेलने में और ज्यादा तेज हो जाते हैं। योग करने से हमारी याद करने की क्षमता अच्छी होती है। पढ़ाई करते समय हमारा ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं जाता है। कभी कभी हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना? अगर हम योग करें तो हम गहरी सांसों के द्वारा अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। हमारा शरीर रबड़ की तरह लचीला होता है, जिससे हमें चोट लगने का खतरा कम होता है। तो आप सभी मुझसे वादा कीजिए दोस्तों कि आप हर सुबह योग करेंगे और अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखेंगे। अपनी दीदी की बात को मानोगे ना? मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त अपनी दीदी की बातों को जरूर मानेंगे। तो चलते चलते दोस्तों, हम सभी ये वादा करते हैं कि हम अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने देंगे। बुजुर्ग घर की शान है, हम करेंगे उनका सम्मान। दोस्तों, चलते चलते खूबसूरत सा नारा आप सभी के लिए, जब हम होंगे 18 पार, रक्तदान करेंगे हर बार। इसी के साथ आपकी रीता दीदी आपसे लेती है विदा। मिलते हैं अगले रविवार इसी समय इसी स्टेशन पर। सुनते रहिए बाल जगत कार्यक्रम और हंसते और सीखते रहिएगा।

0: श्रोताओं, ये था बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल जगत। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:31 हुए हैं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दयाशंकर का शहनाई, विश्वमोहन भट्ट का गिटार और वरुण भट्टाचार्य का हिंदुस्तानी शैली में संतूर वादन। इनके साथ तबले पर अनिंदिया चटर्जी और अभिजीत बनर्जी तथा तानपुरे पर स्वरूप मंडल ने संगीति की है। तो लीजिए दयाशंकर का शहनाई, पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार और वरुण भट्टाचार्य का संतूर पर ये जुगलबंदी। तो पहले सुनते हैं राग यमन, विलंबित और द्रुत रचना, एक ताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दया शंकर का शहनाई, विश्वमोहन भट्ट का गिटार और तरुण भट्टाचार्य का संतूर पर ये जुगलबंदी सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप लुत्फ उठा पाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश,
3: हेलो फरमाइश,
4: हेलो फरमाइश,
5: हेलो फरमाइश।

0: दिलों को जोड़ती हैं बातें, सुरों से सजती है महफिल, आपकी फरमाइशों से खिल उठता है हर पल। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश लाइव फोन इन फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम, जहां आपकी आवाज और आपकी पसंद के गीत बनते हैं इस महफिल की रौनक। तो उठाइए फोन और बताइए अपने पसंदीदा गीत, दीजिए अपने अपनों के लिए प्यार भरे संदेश और बनाइए इस सुहाने सफर को और भी यादगार। और अब नोट कर लीजिए हमारे नंबर्स, नंबर हैं 232558 और 232540। नंबर एक बार फिर बता दें आपको, 232558 और 232540। और अब शुरुआत करते हैं आज के इस संगीत में सफर की। हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी, आपका नाम जानना चाहेंगे?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा
0: जी,
1: और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का ना अंजनेर गोला से बात कर रहा मैडम
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ, आप सुनाओ
0: जी। हमारे यहाँ भी सब कुछ चंगा है, अच्छे हैं हम सब, आप सभी की दुआ है। बताइए क्या सुनेंगे आज आप इस कार्यक्रम में?
1: जी मैडम, गाने भी सुनेंगे और वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो ठंडा ही हो रही है मैडम।
0: हाँ, हमारे यहाँ मौसम अभी बरसात की है और आज तो धूप खिली हुई है, तो अच्छा ही लग रहा है बरसात के बाद थोड़ी सी धूप।
1: जी मैडम, तो फिल्म का नाम है घर वाली और बाहर वाली
0: जी,
1: और इसका टाइटल सॉन्ग सुनूंगा मैडम मैं
0: जी जरूर।
1: और आप इजाजत दे दे, मैं मित्रों को याद कर लूं?
0: ले लीजिए।
1: सबसे पहले आप है, और आपके साथ जो मैडम बैठी हुई है वो भी है, और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, बिमल है, अमल है, अमर साहू है, और धर्मवीर जी है दिल्ली से, और पूर्णिमा मैडम विजयपुरम से, और लाइव कॉलर आपसे बातचीत करेंगे आखिरी तक, उन श्रोताओं तक सुनाना चाहता हूँ आशुतोष और संगीता जी भी।
0: चलिए, तो आपके इन तमाम श्रोता, जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, दोस्तों के साथ मिलकर सुनते हैं ये गाना।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो हेलो फरमाइश, गुड मॉर्निंग।
0: जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी बोल रहे हैं?
1: नहीं, अमित नहीं है, मेरा
0: अनूप
1: नाम
0: जी।
1: है अनूप। अनूप
0: जी, अनूप का अमित हो गया, माफी चाहती हूँ।
1: कोई बात नहीं।
0: हाँ
1: और आकाशवाणी विजयपुरम के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत्य।

0: काल सलाम अलैकुम, राधे राधे।
1: आपको भी हमारा नमस्कार। और अनुप जी बताइए, मौसम कैसा है असम का इस वक्त?
0: जी अभी मौसम मिली जुली है, कभी धूप कभी बादल गिरे हुए है, ऐसे मतलब ऐसे ही माहौल चल रहा है। आज तो बादल छाए हुए है, तो भी आखिर तक क्या होगा ये तो क्वेश्चन मार्क है ना।
1: चलिए
0: तो एक बात मैम,
1: बताइए।
0: किसी को अपना बनाओ तो, किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। किसी पर गुस्सा करो तो जुबान से करो, दिल से नहीं, क्योंकि जुबान से करो दिल से नहीं, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें कोई गांठ नहीं है ना।
1: जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और आपने जिस तरह से बताया कि आपके वहाँ का मौसम कभी धूप है तो कभी बारिश, तो ऐसे मौसम में कौन सा गीत सुनने का सोचा है आपने?
0: जी जी इसी मौसम में एक गाने का मन कर रहा है, का नाम है पना, और गाने का बोले से कभी लगे कि ये सारा सच है, कभी लगे कि ये सारा झूठ। ये कैसी है जिंदगी, ये कैसी है जिंदगी। और कुछ पुस्तकों में याद करता हूँ।
1: जरूर।
0: पहले हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे प्रेमजीत चक्रवर्ती जी मेरा बहुत अच्छे फ्रेंड है, और बसंती लाल सूर्यवंशी जी, अमर सिंह साहू जी, और है हमारे बहुत पुराने दोस्त, अभी क्या हुआ बातचीत नहीं हो रहा है, लोकेंद्र वर्मा जी के लिए और विजय सिंह लखरा जी के लिए, और हमारे सतीश भाई के लिए, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए, और हमारे टू सिस्टर से जिसका नाम है सप्तमी कुंडू जी, और शिप्रा जी के लिए और आपके लिए, है ना।
1: चलिए तो आपके जितने भी दोस्त हैं और सभी मिलकर सुनते हैं ये गीत आपके पसंद पर।
0: जी थैंक यू,
1: धन्यवाद आपका।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी एमपी मध्य प्रदेश से बोला दीदी, मनोज नामदेव
0: जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद दीदी। बस दीदी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से, बढ़िया है दीदी।
0: क्या कर रहे थे इस वक्त आप?
1: हाँ दीदी, शॉप का काम कर रहा है, छोटी शॉप, कपड़े वाली सिलाई मशीन है दीदी, वो चलाता हूँ मैं।
0: अच्छा,
1: तो जी शॉप पर काम कर रहे थे, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे और फोन लगा रहे थे।
0: चलिए, तो लग चुका है आपका कॉल, बता दीजिए कौन सा गीत है जो सुनना चाहेंगे।
1: जी दीदी, आज सुना दो, फिल्म का नाम रहेगा आंदोलन, उसमें एक गाना है, कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत है, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद दीदी, आप बहुत बहुत
0: जी।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए, कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: जी, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया है। मौसम भी बढ़िया हो गया है, कल बारिश हो गई थी दीदी, तो अच्छा लग रहा है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और क्या सुनेंगे आज इस प्रोग्राम में?
1: आज दीदी वो है ये रात फिर ना आएगी, फिल्म का नाम है, गाने के बोले अजूरे वाला जो हो इजाजत, हम ये सारे जहाँ से कहते हैं।
0: जी जी जी, आशा भोसले जी की आवाज़ में है ये गीत।
1: दीदी और कुछ दोस्तों का नाम ले सकते
0: हैं?
1: दीदी
0: हाँ, जरूर।
1: मैंने तो बहन पूर्णिमा जी है बिजुपुरम से, केसे सिंह राजपूत जी है, राम बाबू शर्मा जी है, रमेश प्रजापति है, मांगीलाल चंदेल जी है, राकेश जी शिमला से, और बहन संगीता देवना जी, अशोक देवना जी, अविनाश सैनी जी है, पूरन वर्मा जी है, और गोल्डी जी है, शिवा लोहट जी, धर्मवीर दादा है, लोकेन वर्मा जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, आपको डेलिकेट रहेगा।
0: चलिए, मौसम जो है आपका सुहाना हो चुका है वहां पर, तो और इस गीत के साथ एंजॉय कीजिएगा।
1: धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत।

0: हेलो फरमाइश।
1: परम माननीय दीदी शाम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका शुभ नाम।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से अरुणी दीदी को स्टार करता हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, आपको भी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बता दीजिए कि कौन सा गीत है जो आप सुनेंगे।
1: जी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज दीदी रक्तदाता दिवस है और आज के दिन रक्तदान करने वालों को विशेष रूप से सम्मानित और उनका अभिनंदन किया जाता है और ब्लड डोनर करने के लिए प्रोत्साहित और प्रोत्साहन किया जाता है।
0: जी जी
1: और इसी
0: बिल्कुल
1: प्लस में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी
0: जी।
1: और गीत की बोल है, हमसे तुमसे हो गया है प्यार तो हम क्या करें, ऐसा करके गीत है।
0: जी, अमर अकबर एंथोनी फिल्म से ये गीत है। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही, आज रक्तदाता दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, और किसी को रक्तदान देकर किसी के जीवन को बचाना एक बहुत अच्छी बात होती है और बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी के चेहरे में फिर से वो मुस्कान आ जाती है। तो आपने इतनी अच्छी बात कही और आपकी पसंद पर अब सुनवा रहे हैं ये गीत, सुनिएगा।
1: जी, आज तो रक्तदाता दिवस है, रक्तदान करने से होता है 1 यूनिट यदि आप रक्तदान करते हैं
0: जी,
1: तो कम से कम 3 लोगों को इसमें भाग लिया जा
0: जिंदगी जी
1: सकता है, उसके
0: बचाई जा सकती
1: प्लाज्मा
0: है।
1: और WRC सबको अलग अलग और इस तरह से 3 लोगों को ये काम आ सकता है ब्लड।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब सुनेंगे ये गीत।
1: जी आपको हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार
0: जी, आपका भी, सुनिएगा ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: मैम, मैं शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ। मैम,
0: जी
1: मैं
0: जी
1: बहुत अच्छा हूँ और इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है, बहुत
0: चलिए।
1: अच्छा लग रहा है मैम।
0: हाँ, चलिए जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा गीत है जो सुनेंगे।
1: मैम, मूवी का नाम है अंदाज और गाने के बोल हैं, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ।
0: जी, बहुत ही
1: मैम,
0: खूबसूरत
1: कुछ
0: गीत है।
1: दोस्तों को याद कर सकती?
0: जरूर।
1: हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी, राकेश जी, अविनाश जी, भगवान सिंह परमार जी, रमेश प्रजापति जी, पुरुषोत्तम भैया जी और तमाम सुनने वाले और स्पेशली आप।
0: चलिए हम सभी के साथ मिलकर सुनेगा आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से कॉल किया आपने?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सुरन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: जी जी, चलिए जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा गाना है जो सुनेंगे।
1: जिगर का सुना देना आप
0: जी।
1: और आप कैसी हो?
0: हाँ, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए।
1: बस हम बहुत अच्छे हैं। मौसम कैसा है आपके इधर?
0: हाँ, थोड़ी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही बारिश थी, अब तो आज धूप खिली हुई है तो अच्छा लग रहा है।
1: जी जी
0: जी, आपने बताया जिगर मूवी का गीत है ना?
1: जी जी
0: हाँ, इसका कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: हम आए हैं बाराती बारात लेके।
0: जी, आए हैं हम बाराती बारात लेके। जी, सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गीत, सुनिएगा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं एम राधे राधे।
0: राधे राधे नमस्कार। और ये प्यारी सी आवाज किसकी है, जान सकते हैं?
1: जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवपत बोल रही हूँ।
0: त्रिपुरा से आपने कॉल किया, नमस्कार। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम आपको।
0: और बताइए कैसी हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया, और आप कैसे हो मैम?
0: मैं भी अच्छी हूँ, आप सभी की दुआ है। और नाश्ता वगैरह हो गया आपका?
1: जी सब खत्म।
0: अच्छा, और दोपहर की क्या तैयारी है?
1: दोपहर में सोचेंगे, अभी तो सुबह का हुआ।
0: चलिए, तो गीत सुनते सुनते सोचिएगा क्या बनाना है। अब बता दीजिए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: जी लाडला फिल्म का गाना सुना दीजिए, तेरे उंगली पकड़ के चला।
0: जी जी,
1: आज माँ की बहुत याद आई इसलिए गाना सुनना।
0: ओह चलिए चलिए, तो आपकी पसंद पर सप्तमी जी सुनवा रहे हैं आपकी।
1: दो चार भैया को नाम लेना है मैम।
0: हाँ ले लीजिए जल्दी से।
1: जी पहले आप सुनेंगे, अविनाश भैया है, भगवान भैया, राम बाबू शर्मा जी, शारदा प्रसाद जी, मांगीलाल जी, नरेश जी, रमेश जी और संदीप भैया, प्रेम सिंह भैया, सबको लेकर सुनाए।
0: चलिए, आपके तमाम जो भैया जो हैं उनके साथ, हमारे साथ, सबके साथ में मिलकर सुनेगा आपकी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार राधे राधे, राधे।

गीतों की महफिल अब यही विराम लेती है, यादों की खुशबू मगर दिलों में बसी रहती है। तो श्रोताओं, आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबने अपनी फरमाइशों और संदेशों से इस महफिल को बेहद खास बना दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन।

0: श्रोताओं, आज के जनता जंक्शन कार्यक्रम में मैं देवकी
1: और मैं सोनिया
0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप पहुंचे हैं अंडमान की पावन धरती पर स्थित राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल।
1: सेलुलर जेल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही इतिहास के पन्ने खुद ब खुद जीवंत हो उठते हैं,
0: जहां हर दीवार में आजादी के परवानों की कराहें सुनी हैं,
1: हर कोठरी ने वीरों के संकल्प को महसूस किया है।
0: ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 11 फरवरी 1979 का दिन भारतीय इतिहास में अमर हो गया,
1: जब भारत सरकार ने इस अमर स्थल को दिया राष्ट्रीय स्मारक का सम्मान।
0: और दोस्तों, आज हम खड़े हैं इसी राष्ट्रीय स्मारक के समक्ष,
1: जो आज पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है,
0: और इस वक्त काफी पर्यटक हमें नजर आ रहे हैं,
1: तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। हेलो मैम, नमस्ते।
2: नमस्कार।
1: आपका नाम?
2: साध्वी सिंह
1: जी। आप कहाँ से हैं?
2: मैं उत्तर प्रदेश से।
1: अच्छा, तो अंडमान कैसे आना हुआ आप?
2: बस मेरे सन ने टूर बुक करा, वी केम टू सी दिस प्लेस।
1: अभी हम यहाँ पर सेलुलर जेल, जो यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक है, इसके सामने खड़े हैं हम, और कुछ आपके विचार जानना चाहेंगे।
2: अच्छा, मुझको तो ये देखकर फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म भरा, कैसे लोगों ने अपना सैक्रिफाइस करा, कितने टॉर्चर सहे और तब हमको आज़ादी मिली, तो हम लोगों को तो बहुत ही सल्यूट करना चाहिए, एंड वी शुड रियली वर्शिप इट एज अ टेम्पल ऑफ सेक्रीफाइस नाउ आई बिलीव। बिल्कुल सही नाम रखा है, कितना लोगों ने टॉर्चर करा हमको अंदाज़ा भी नहीं है।
1: और आजकल के जो युवा वर्ग है, उनको कुछ संदेश देना चाहती हैं आप?
2: यही कि इसको देखकर अपने कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली, अपने फ्रीडम को सही तरीके से इस्तेमाल करें, और ऐसी बिना बात पर कंट्री को डिस्टर्ब ना करें, और मिलजुल के रहे
1: जी। और गाना इस समय आपके जहन पे कोई आ रहा हो तो?
2: वहाँ पर बैंड में गा रहे थे, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो, वही गाना बस याद आ रहा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए मैम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: नमस्कार।
0: आपका नाम जानना चाहती हूँ।
1: मेरा नाम पारस है।
0: पारस जी, आप यहाँ पे घूमते हुए मुझे नज़र आए, आपके हाथ में एक बच्चा भी है छोटा सा, तो यहाँ आप अंडमान घूमने आए हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: कहाँ से हो पारस जी?
1: हम गुड़गांव से आए हैं।
0: गुड़गांव हरियाणा?
1: हाँ जी। बेसिकली वैसे तो मैं हरियाणा से नहीं हूँ, अभी हरियाणा में रहता हूँ। वैसे तो मैं धनबाद से हूँ और हमारी वाइफ हैदराबाद से है।
0: ओके, धनबाद यानी झारखंड के। जी जी, बहुत अच्छा जगह है। और मैं कहाँ कहाँ घूमे आप?
1: हमने अब बेसिकली पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील, ये तीनों जगह हम गए, और जो भी साथ में बीचेस वगैरह हैं हम वहाँ गए। हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी यहाँ पे अंडमान में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और सबको करनी चाहिए जो यहाँ आते हैं, ये मेरी सलाह है।
0: यहाँ पे सेलुलर जेल के सामने खड़े हुए हैं, तो आपने ये सेलुलर जेल विज़िट किया?
1: बिल्कुल, हमने सेलुलर जेल भी विज़िट किया।
0: और आपको अंदर जाकर कैसा महसूस हुआ?
1: सेलुलर जेल मुझे ऐसा लगता है कि अपने इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत पन्ना है, मैं ये कहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ इस खूबसूरत पन्ने से यातनाएं इतनी जुड़ी हुई है, दुख दर्द इतने जुड़े हुए हैं कि सभी को समझना चाहिए इस जेल में क्या हुआ था पास्ट में, ये जेल कैसे बना। सबको इतिहास पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। अगर अगर कोई यहाँ आएगा तो यहाँ एक शो भी होता है, जो कि शो को अटेंड करना चाहिए, जिससे उनको और इस जेल के इतिहास के बारे में पता चले। तो जो भी यातनाएं दी गई ब्रिटिशर्स द्वारा बंदियों को, कैदियों को यहाँ लाकर, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो मेन लैंड से यहाँ लाए गए, या फिर जो देश के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे उनको यहाँ लाया गया, और उनको क्या यातनाएं दी गई, वो ये जेल इतिहास बताता है। इसके 7 विंग्स हैं, जो कि जाना जाता है कि 4 विंग्स सुनामी और उससे ख़राब हो चुके हैं और 3 विंग्स अभी बचे हुए हैं। लेकिन हाँ, जो भी यहाँ आए सेलुलर जेल ज़रूर देखे और उसके बारे में पढ़ के आए तो बहुत ही मज़ा आएगा।
0: और आपने एक एक सेल देखा होगा, एक तो आपको वो देखकर क्या महसूस किया आपने?
1: अगर थोड़ा सा अपने आप को उस वक्त में ले जाए और सोचे कि अगर मुझे वहाँ 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो शायद 2 दिन का आप 2 मिनट भी नहीं रह पाओगे। बहुत ही भयानक दृश्य है कि किसी को अकेले छोड़ दिया जाता है, एकदम अकेलापन महसूस कराया जाता है, दुनिया से उसे दूर रखा जाता है, अगल बगल वालों से भी दूर रखा जाता है, आप बगल वालों से भी नहीं मिल सकते, आपको ये नहीं पता कि आपकी अगली सेल में कौन है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी के लिए कितना पीड़ादायक होगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने अंदर जाकर वो ही चीज़ को महसूस किया जो हमारे आज़ादी के लिए जितने वीर शहीद जो भी यातनाएं झेली, वो चीज़ आपने खुद महसूस किया, तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। और घूमना हो गया या फिर और कई दिन रुकना है?
1: बस हम कल निकल रहे हैं, तो हमारा ये 7 दिन का टूर था, कल 7वां दिन है और कल हम निकल रहे हैं यहाँ से।
0: तो कैसा लगा ये 7 दिन आपके, कैसे रहे अंडमान?
1: बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, हर तरह के आई थिंक वेकेशन डेस्टिनेशन में इसको गिना जा सकता है। यहाँ वेदर बहुत ही अच्छा रहता है, तो बहुत ही खूबसूरत वेदर है, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। बीच भी है देखने के लिए, सेलुलर जेल भी है, वाटर स्पोर्ट्स भी है, तो आप अगर स्कूबा डाइविंग करेंगे तो आपको

0: मरीन लाइफ देखने को मिलेगी, आप स्नॉकलिंग करेंगे तो मरीन लाइफ देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी जगह है, तो बहुत ही क्लियर वाटर्स है। तो मैं तो कहूँगा कि कहीं भी बाहर विदेश जाने से पहले एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए।
1: कुछ गीत हो जो आप इस प्रोग्राम में प्ले कर सको?
0: हाँ, एक गीत है नीले नीले अंबर पर।
1: यस, कलाकार मूवी का ये गीत है, सो जरूर प्ले करेंगे। पारस जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो आपको भी धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: हाय, नमस्ते
0: जी। आपका नाम?
1: उन्नति
0: जी। कहाँ से आई हैं आप उन्नति जी?
1: मैं गुड़गांव से।
0: अच्छा, गुड़गांव के बारे में कुछ बताइए हमें।
1: गुड़गांव इंडिया का बहुत बड़ा आईटी हब है और वहाँ पे बहुत सा इमिग्रेंट पॉपुलेशन है। बस हसल बसल, इट इज़ अ सिटी विद फुल ऑफ हसल बसल।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ।
0: आप कब आए आप अंडमान घूमने?
1: मैं अंडमान आई थी संडे लास्ट वीक, 2nd नवंबर।
0: और आज आप सेलर जेल, यहाँ का जो ऐतिहासिक स्मारक

0: है यहाँ पर खड़ी हुई है, तो कैसा महसूस कर रही हैं? क्या आपने अंदर भी विजिट किया है?
1: हाँ, मैं कर चुकी हूँ अंदर विजिट।
0: कैसा अनुभव किया आपने?
1: देखो, एक्सपीरियंस जेल का तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पीछे की स्टोरीज का जो दर्द है वो सुन के ना बहुत बुरा लगता है। बहुत मतलब कि रियलाइज़ होता है कि लोगों ने कितना ट्रॉमा झेला है हमें वो फ्रीडम दिलाने के लिए जो हमें आज मिली है। सो अच्छा भी लगता है, बट उनके लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की ना अब वैल्यू ज़्यादा होती है।
0: जी। और आज के हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहती हैं आप?
1: मैं तो ये बोलूँगी, हमें मौका नहीं मिला, बट जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो, उस अपॉर्चुनिटी को मना मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए।
0: गीत संगीत का शौक रखती है आप? गाने वगैरह सुनती हैं?
1: सुनती हूँ काफ़ी कम, अभी अभी कुछ टाइम से तो काफ़ी कम, बट हाँ, मैं म्यूज़िक की काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ।
0: तो इस समय आपको कोई गाना याद आ रहा हो, आपकी पसंद का कोई गाना?
1: ये हसी वादिया ये खुला आसमां,
0: बहुत ही प्यारा गीत है ये, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच हमें अपॉर्चुनिटी देने की कि हम आपसे बात कर सकें।
0: थैंक यू सो मच मैम।

0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका नाम जानना चाहूँगी।
1: मैं सुपर्णा घोष, मैं गुड़गांव हरियाणा में रहती हूँ।
0: इतनी दूर से आप आए हैं यहाँ, आज मैं सेलुलर जेल के सामने खड़ी हूँ, तो आप यहाँ पे क्या सोच कर आई थी?
1: हम लोग घूमने आए हैं, फैमिली टूर पे आए हैं।
0: तो आपका सबसे ज़्यादा मेन फोकस क्या था अंडमान आने का?
1: अंडमान आने का मेन रीज़न था बीच, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है तो मैं फर्स्ट आई थिंक सेलुलर जेल फर्स्ट लाइट एंड साउंड शो देखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए हमने ये प्लान किया था।
0: आपके साथ और कौन कौन आए?
1: मेरी फुल फैमिली आई हुई है, मेरे हस्बैंड, मेरे दो बेटे।
0: और कहाँ कहाँ घूमने का आपका प्लान है, कितने दिन यहाँ पे रहेंगे?
1: आई थिंक 4-5 दिन रहेंगे। हैवलॉक है, रॉस आइलैंड है, नील आइलैंड है।
0: आपके आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो मैम, नमस्ते।
2: हेलो, नमस्ते
0: जी, आपका नाम जानना चाहेंगे?
2: मेरा नाम गायत्री है, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, बैंगलोर।
0: तो अंडमान कैसे आना हुआ आपका?
2: हमारा आइटनरी पे था, आई मीन बकेट लिस्ट में था, और अंडमान हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इधर आया था।
0: आपकी एनिवर्सरी कब है?
2: आज।
0: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए आपको। और हमारा अंडमान कैसा लगा आपको?
2: बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, नो पोल्यूशन, प्लास्टिक फ्री है, नेचर आप कितना क्या बोलते हैं आप सुरक्षिता करते हैं ना, इट्स वेरी नाइस। आप लोग क्लीन रखा है, इट्स वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है।
0: तो अंडमान में आप कौन कौन सी जगह घूम चुके हैं?
2: पहला दिन हम पोर्ट ब्लेयर था, नेक्स्ट डे वी वेंट टू हैवलॉक, उधर 2 दिन था, और एलिफेंट बीच सब कुछ देख के, और आज ही सुबह वी केम टू साउथ अंडमान। आज वी वेंट टू मुंडा पहाड़ बीच एंड नाउ सेलुलर जेल। इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी, इफ एनीवन इज विजिटिंग अंडमान प्लीज स्टे फॉर सम टाइम, विजिट एंटायर आइलैंड, इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वन ऑफ द इंडियाज जेम।
0: अच्छा, तो आप सेलुलर जेल अंदर विजिट कर चुके हैं?
2: नहीं, अभी नेक्स्ट शो है,
3: 6:45 शो है हमका।
0: गीत संगीत का शौक रखते हैं, गाने वगैरह सुनने का?
2: हिंदी सॉन्ग है
3: या ए राते ही मौसम वो सॉन्ग, या दीराना दिल हमारा वो सॉन्ग बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू सो मच।

0: हेलो सर, नमस्ते।
1: हाँ जी मैम, नमस्ते।
0: आपका नाम?
1: मेरा शंभू कुमार पाठक।
0: कहाँ से आए हैं आप?
1: जी मैं यूपी से आया हूँ।
0: तो अंडमान कैसे आना हुआ आपका?
1: अंडमान घर वालों का सबका प्लान था कि कहीं नवंबर स्टार्टिंग में घूमने जाया जाए, तो इस लोकेशन को सर्च किया, अच्छा लगा यहाँ का वेदर, तो इसलिए प्लान करके यहाँ पे आ गए।
0: तो आज आप यहाँ अंडमान की पावन पुण्य धरती के ऐतिहासिक स्मारक सेलर जेल के सामने खड़े हैं, तो इसके इतिहास के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे सुनने वाले श्रोताओं को?
1: जी मैम, इसके बारे में तो ये पता था कि ये काला पानी के नाम से फेमस है और इसमें हमारे पूज्य श्री वीर दामोदर सावरकर जी यहाँ पे उनको पनिशमेंट दी गई थी, बंदी बना के रखा गया था।
0: हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो दोस्तों, ये था आज का जनता जंक्शन।
1: अगले अंक में किसी और जंक्शन पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देवकी
0: और सोनिया का नमस्कार।

0: Junction.
1: अभी आप स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ये पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जनता जंक्शन सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए गजल। फनकारा हैं पामेला सिंह और रेशमा। सुनिए इनकी गाई चंद गजलें। सबसे पहले सुनिएगा पामेला सिंह को।

गज़ल। इस कार्यक्रम में आज की फनकारा थीं पामेला सिंह और रेशमा। इसी के साथ ही कार्यक्रम अभी समाप्त होता है।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप सुन रहे थे मलयालम कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने को हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम

सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत अभी आप ताहिरा सईद की गाई कुछ गीत सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल

पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंका केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के घर संसार के अंक में। दोपहर की इतनी धूप में सुनहरे गीतों और जानकारियों की बौछार लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं, आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अंक एक सुविचार के साथ, जो कहता है कि अच्छी ज़िंदगी जीने के बस दो ही तरीके होते हैं। जी हाँ बहनों, अच्छी ज़िंदगी जीने के बस दो ही तरीके होते हैं। एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। क्यों बहनों, सही कहा ना? आप में से कई बहनें इस विचार से सहमत होंगी। हम अक्सर अपने जीवन में कुछ सपने संजोते हैं, कुछ मंजिलें तय करते हैं, लेकिन कई बार हमारे बहुत कोशिश करने पर भी हम सभी सपनों को पूरा नहीं कर पाते। कुछ हालात के कारण या फिर शायद हमारे लिए किस्मत ने कुछ और ही लिखा होता है। ऐसे में जो हासिल नहीं हुआ उसके लिए अफसोस करने रोने से भला है जो हासिल हुआ उसमें खुशियाँ ढूंढिए, शायद वो आज के पल और भी खूबसूरत बन जाए, है ना? ये मंजिल सपनों की मंजिल से ज़्यादा बेहतरीन हो। तो चलिए इसी विचार के साथ यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

बहनों, हम सभी जीवन में अच्छे काम करने का निरंतर प्रयास करते हैं। कई बार दान भी करते हैं, पर क्या आप जानती हैं कि रक्तदान महादान कहलाता है? क्योंकि आपका दान किया गया आधा लीटर रक्त किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। क्योंकि रक्त का कोई भी विकल्प नहीं है और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए ये संजीवनी से कम नहीं है। आपके द्वारा दान किया गया

एक यूनिट रक्त को प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कोशिकाओं में अलग किया जा सकता है, जिससे एक बारी में कई जानें बचाई जा सकती हैं। कई बार अस्पतालों में अत्यंत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को या फिर किसी सर्जरी के मरीज को, कैंसर का इलाज लेने वालों को, थैलेसीमिया के पेशेंट को या फिर प्रसव के दौरान माओं को अक्सर खून की या फिर प्लेटलेट्स की या प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, और रक्तदान इस समय सबसे ज़्यादा मददगार होता है। जितना रक्तदान लेने वाले के लिए लाभकारी है, उतना ही देने वाले के लिए भी, क्योंकि रक्तदान करने से शरीर में आयरन का स्तर संतुलित बना रहता है, जिससे कि हृदय की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसी के साथ जब हम रक्तदान करते हैं, हमारे शरीर का बोन मैरो तेज़ी से नई रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है, जो हमें तंदुरुस्त और फुर्तीला बनाता है। अब जब आप रक्तदान करने जाते हैं, तो इस वजह से आपके स्वास्थ्य जांच भी हो जाती है ना? जैसे कि वज़न का जांच, ब्लड प्रेशर, पल्स, हीमोग्लोबिन और साथ ही साथ संक्रामक रोगों के लिए रक्त का परीक्षण भी निशुल्क हो जाता है। बहनों, हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ही है नियमित और सुरक्षित रक्तदान को प्रोत्साहित करना। ये दिन समर्पित है कार्ल लैंडस्टेनर को, जिन्होंने ABO रक्त समूह, जो हम जानते हैं, उसकी खोज की थी। और इस वर्ष रक्तदान दिवस का जो विषय है वो है स्वैच्छिक रक्तदान को सामान्य बनाना, यानी कि नॉर्मलाइजिंग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। तो चलिए बहनों, हम भी इसका हिस्सा बने और रक्तदान करें और एक रक्तदाता बने।

बहनों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अब अपनी बातों का रुख एक ऐसे परिवार के सदस्य के ऊपर करते हैं जो एक घने पेड़ की तरह हमेशा छांव देते रहते हैं, पर अक्सर उन्हें समाज में नकारात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उन्हीं की बदौलत हम जीवन के कई उतार चढ़ाव को आसानी से पार कर पाते हैं, क्योंकि उनका सहारा, उनकी सलाह हमें सही गलत की पहचान करवाती है। जी हाँ बहनों, मैं बात कर रही हूँ घरों के बुजुर्गों की, जिनसे हमारा मकान घर बनता है और बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। वो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा हमें देते रहते हैं, जैसे ही प्रकृति हमें देती है, लेकिन कई जगह उन्हें इसके बदले में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये उत्पीड़न उनके जीने की आशा को कम कर देता है, बीमारियों की ओर उन्हें झोंक देता है, और आप जानती हैं कि उनके साथ किए गए भावनात्मक दुर्व्यवहार उन्हें मन तक तोड़ देते हैं। उनके अधिकारों के बारे में अक्सर वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन उन्हें अवगत करा के उनके खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और साथ ही उनके प्रति हो रहे भेदभाव और अपेक्षा को कम करने के लिए हर वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उनके साथ अक्सर मौखिक और गैर मौखिक उत्पीड़न किया जाता है।

सकता है। कई बार तो सिर्फ संपत्ति के बंटवारे के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। कुछ अत्याचार तो अपने करते हैं और कई बार ठगी, शारीरिक दुर्व्यवहार के भी वो शिकार हो जाते हैं। बहनों, एक बुजुर्ग की मनोस्थिति और हालत बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होती है, जिनको हर समय प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है, और शारीरिक तौर पर तो वो युवा की तरह काम कर पाने में ज़्यादा सक्षम नहीं होते, लेकिन उनके जीवन का अनुभव कहीं ना कहीं हमारे लिए एक वरदान के समान होता है। बहनों, एक दिन हम सब ने अपने जीवन में उस पड़ाव पर आना है जहां आज हमारे घर के बुजुर्ग खड़े हैं, तो ऐसे में उनकी मनोस्थिति को हमारा समझना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही उनके ऊपर हो रहे मौखिक और अमौखिक अत्याचार को रोकना भी हमारा फर्ज बनता है। तो चलिए हम अपनों के लिए ये अपना फर्ज निभाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बने। बहनों, यहाँ मैं आपसे चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। थाम के तेरा हाथ चलना उसने सिखाया था, थाम के तेरा हाथ चलना उसने सिखाया था, बोली का पहला अक्षर भी उसने ही पढ़ाया था, बोली का पहला अक्षर भी उसने ही पढ़ाया था। जब तितर बितर किया था तूने पूरे घर को, एक मुस्कान के साथ पूरा घर संभाला था। आंगनवाड़ी के पहले दिन नहा तुम्हारा छोड़ा था, आंगनवाड़ी के पहले दिन नहा तुम्हारा छोड़ा था, नैनों में इंतज़ार लिए हर लम्हा उसने बिताया था। तेरे बुखार से तपते बदन को रात भर सहलाया था, तेरे बुखार से तपते बदन को रात भर सहलाया था, तेरी खुशी में खुशी तेरे दुख में आंसू उन्होंने बहाया था। आज जब वो कंधे झुक गए हैं, आंखों में आंसू कहीं रुक गए हैं, तब उन हाथों को तू थाम जिसने जीवन जीना सिखाया था, उन हाथों को तू थाम जिसने जीवन जीना तुम्हें सिखाया था।

तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का घर संसार का अंक यही समाप्त होता है। हमें आशा है कि आज का अंक आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने कई बातों को जाना होगा। तो चलिए, इसी के साथ अपनी सखी, अपनी दोस्त रीमा अरोड़ा को आज के अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक

0: एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों

0: की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और
3: दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ गढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल। मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार द्वीपों में खराब मौसम के कारण दक्षिण पश्चिम हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से रही। ऐसे में द्वीपों के अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम वर्षा हुई और कहीं कहीं पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि तेज हवाओं के कारण वायु की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेंगे, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हैं। ऐसे में समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में न जाएं। ये था मौसम का हाल। श्रोताओं, अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम के 4 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा ये प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: विविध भारती FM श्री विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत लहरी। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए उड़ान फिल्म का गाना, वाजी जॉय बरुआ और न्यूमन पिंटो की, अमिताभ भट्टाचार्य की बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत।

फिल्म आशाएं सिराज उपल की बनाई धुन व इन्हीं की आवाज है, शकील सोहेल के बोल हैं।

जावेद जाफरी, आकृति कक्कर और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में अभी आपने सुना आशीष पंडित की रचना प्रीतम का संगीत था। और ये गीत हमने लिया था फिल्म हेलो डार्लिंग फिल्म से। और अब कार्यक्रम का अगला गीत इस ब्रेक के बाद।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ताकते रहते
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in।

0: या afcat.edcil.co.in पर।
1: और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं दबंग फिल्म का गीत। गायक राहत फतेह अली खां, फैज अनवर की बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत है।

शेखर राव जियानी के बोल, विशाल दादलानी का संगीत, राहत फतेह अली खां की आवाज़, फिल्म अनजाना अनजानी फिल्म के इस गाने के लिए।

0: ना जाने आसपास है खुदा, अनजाना अनजाने फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। और अब इन्हीं की आवाज़ में एक और गीत सुनिए नॉकआउट फिल्म से, और ये है कार्यक्रम का आखिरी नगमा।
1: You know you win some, and then you lose some.

इस समय दोपहर बाद के 3:17 हुए हैं। अब विविध भारती FM श्री विजयपुरम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम एल्बम टाइम्स।

0: हेमा सार देसाई की आवाज़ में अभी आपने ये एल्बम सॉन्ग सुना हिंदुस्तानी गुड़िया एल्बम से, और अब कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आसमा और साथियों की आवाज में पेश है अगला एल्बम सॉन्ग।

क्लिंटन सेरजो और साथियों की आवाज़ों में अभी आप ये एल्बम सॉन्ग सुन रहे थे। इसी के साथ ही प्रोग्राम एल्बम टाइम्स अब यहीं समाप्त होता है।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को देवकी का प्यार भरा नमस्कार। आज बातें मौसम की। मौसम केवल प्रकृति का नहीं हमारे मन का भी आईना होता है। कभी सावन की फुहारें दिल को भिगो जाती हैं, कभी ठंडी हवाएं यादों की झरोखे खोल देती हैं।

सच ही कहा गया है, जब मौसम सुहाना होता है तो रास्ता खूबसूरत लगने लगता है। प्रकृति की यही सुंदरता हमारे मन को नई उमंगों से भर देती है। ऐसे ही खुशनुमा एहसास के साथ अब सुनते हैं अगला गीत।

बारिश की बूंदों में एक अनोखा जादू होता है। ये कभी पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है तो कभी दिल में नए सपने जगा देती है। बारिश के इसी भीगे भीगे एहसास के बाद अब मौसम का एक और रंग।

कभी कभी मौसम और संगीत मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। ठंडी हवाएं, भीगी रातें और मधुर गाने, इनका साथ सचमुच अनमोल होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, चलिए सभा की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामन इंजी रोकर हामांग एंग रे तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्स रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनका तलोन ही इंग हराब

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम लम्हे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ। हेल्थी फूड्स मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, जाने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट फूड्स। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाने का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन एक दूसरे से संबंधित होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भोजन खाने की जरूरत होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के विकास, रखरखावा और इम्यून सिस्टम के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे लोग

लगाते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन में जरूरी समझते हैं। वे स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी का उनके पता नहीं। रिपीट, कट एंड रिपीट द होल पॉइंट। लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का उनको पता नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए बिना शरीर की फिटनेस नहीं हो सकती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी फूड्स और डाइट मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़े होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रूट जैसे बेरीज और जामुनों का सेवन हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बेरीज और जामुन दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज फ्रूट खाते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बहुत से फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट से हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट में फैटी फिश की तरह ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक हेल्थ की बात करें तो भोजन सबसे अधिक अंधे की पहलुओं में से एक है। लेकिन सच्चाई यह है कि हेल्थी डाइट के बिना आप अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते हैं। भोजन शरीर को विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन आदि जैसे हेल्थी पोषक तत्व प्रदान करता है जो ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कई शोध से ये बात साबित हुई है कि एक पौष्टिक आहार से कई तरीकों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव और शरीर की सूजन से लड़ने वाले सुपर पोषक तत्व है। ये ताजे और कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती है जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरीज, नट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, डू यू नो गट इज अ सेकेंड ब्रेन। पेट को बॉडी के दूसरा ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका नेटवर्क और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण और ब्रेन को बॉडी की जरूरत का संकेत भोजन के रूप में काम करने के लिए संकेत भेजता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफिर, कम्बुचा, किमची आदि अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेशन, आंतों को साफ करना और पेट को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है तो ब्रेन को विश्राम, निराश और खुश होने के संकेत मिलते हैं। यह बॉडी की सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। एक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भोजन मानसिक हेल्थ को बढ़ाए देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। भोजन में पोषण से ब्रेन को जरूरी ईंधन मिलता है और प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन के अनुकूल डाइट ले। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी को ये जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बात को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीजों की कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में हम आपके लिए दिमाग को हेल्थी और बीमारियों से दूर रखने के उपाय बता रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल हो।

होते हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी निर्धारित करने में मदद करता है कि एक तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं और चुनाव करते हैं। बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता तक जीवन का हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फोलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्रों को समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं का जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे और युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद से जिस तरह से लोगों में चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं की जा सकता है। तो दोस्तों, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे चेतन के साथ। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 10वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनते हैं आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे आप सुन सकते हैं व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइशों पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगिनी। 6:30 पर कार्यक्रम होगा धरती के गीत, जिसमें आज आप गुजराती लोकगीत सुनेंगे। 6:45 पर देश गान। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं से अवगत कराया जाएगा शाम 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीत। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30। रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार की 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इसके अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आप FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब सुनते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा दालचीनी की खेती। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा पेड़ शीर्षक पर। रामचरितमानस गान की 270वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। 6:40 पर समाचार वार्ता। 6:45 पर सुनिए वतन के गीत। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:15 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देश रागनी। इसी समय एफएम 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत भी आप सुन सकते हैं। 7:30 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग अंडमान, जो मीडियम वेव और एफएम 100.9 MHz इन दोनों चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह का गायन। 9 बजे सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने सुहाने। कल सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप आरती अंकलीकर टिकेकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन सकते हैं। गीत गाता चल फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 10 बजे। 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1306वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे अनुराधा पोडवाल के गाए गीत। 12 बजे सुनिए तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। 1:10 पर आप सुन सकते हैं समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए। 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे एफएम 100.9 MHz पर हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। 3:30 पर कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें कल फनकार होंगे हरिहरन। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं 4:45 पर। शाम 5 बजे आनंद लीजिए तमिल कार्यक्रम का और 5:30 पर बंगला कार्यक्रम। शाम 6 बजे आप सुन सकते हैं कृषि जगत। 6:30 पर रिमिक्स गीतों का कार्यक्रम होगा पॉप मसाला। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं 7:15 पर। 7:20 पर कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के तहत आप सुनेंगे फिल्मी गीत। 7:30 पर आप सुन सकते हैं युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत भी पेश किए जाएंगे। रात 10 बजे सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशी आते हैं। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

इस कार्यक्रम का यह पहला गीत हमने लिया है आ अब लौट चले फिल्म से। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत रचना समीर की और संगीत नदीम श्रव।

श्रोताओं, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। बोल लिखे संतोष आनंद ने, संगीत अनु मल्लिक का। इस गीत को हमने लिया है तहलका फिल्म से। आवाज़ें अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे है। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழமுதம். வணக்கம் நேர்களே.

श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं और अब समय है व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संगीत संगनी का।

नमस्कार दोस्तों, संगीत संगिनी कार्यक्रम में मैं मंजीत आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का है और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं महिलाओं की फरमाइशों को। तो सखियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप संदेश जरूर भेजें। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 9474234000। सखियों, संदेश भेजते समय अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल जरूर लिखें। हर रविवार इसी समय यानी संध्या 6 बजे हम आपकी फरमाइशों को संजोकर पेश करेंगे सखियों आपका अपना कार्यक्रम संगीत संगनी।

तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं चाइना टाउन फिल्म का ये गीत। इस गीत की फरमाइश की है श्री विजयपुरम एबरडीन बाजार से यास्मीन बानू ने।

0: याग्निक और साथियों की आवाजों में तेजाब फिल्म का ये गीत।
1: किसी का इंतजार।
2: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

श्रोताओं, अब सुनते हैं कैंबल बे से गुरमीत कौर की फरमाइश पर शहनशाह फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की।

अब सुनते हैं जसपिंदर निरूला और सोनू निगम की आवाज़ों में सोल्जर फिल्म का गीत। इस गीत को पसंद किया है स्वराज दीप से सुजाता हल्दार ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं मोहरा फिल्म का गीत, आवाजी अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत विज्जू शाह का। इस गीत की फरमाइश की थी लिटिल अंडमान से विशाखा और शैली ने।

सखियों, अगले रविवार संध्या 6 बजे हम अपने आपके संदेशों के जरिए आपकी पसंद के गीतों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप संगीत संगिनी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं धरती के गीत कार्यक्रम के तहत गुजराती लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम के तहत गुजराती लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। अब सुनते हैं देशगान।

एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ये थी आवश्यक सूचना।

श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दूं, संध्या 7:30 पर आप सुन सकते हैं युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे।

कल सुबह 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा पेड़ शीर्षक पर। 7:15 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे। इस छोटे से अंतराल के बाद
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा गुड्डू।
6: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो
7: कूल रहो।
8: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय ने आज लाइव योगा सत्र के जरिए नया गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मत्स्य पालन विभाग केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम लागू कर रहा है और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान के ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप पारितंत्र को दर्शाता है। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 120 से अधिक स्टार्टअप, प्रमुख निवेशक, प्रौद्योगिकी लीडर और दुनिया भर के शिक्षा संस्थान शामिल हैं। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम तकनीक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नवप्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत में स्टार्टअप क्रांति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश के युवा यांत्रिक बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष तकनीक से लेकर हरित ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और रक्षा नवाचार संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान विकसित कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप है और भारत लोकोन्मुखी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योगा सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योगा कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील

मौजूदगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की ओर से श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 20 जून को सुबह 10 बजे परिसर में आयोजित होने वाले दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत में कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों और सर्किट बेंच पोर्टलर में दायर होने वाले पूर्व मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इच्छुक पक्ष या अधिवक्ता अपने आवेदन 16 जून शाम 5 बजे तक कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्किट बेंच परिसर पोर्टलर में जमा कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित तिथि तक कार्यालय की ईमेल पर भी भेजे जा सकते हैं। निर्धारित सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर अगली लोक अदालत में सुनवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम और आधार शिविर। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मत्स्य पालन विभाग केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम मत्स्य पालन इनपुट की आपूर्ति आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं लागू कर रहा है। गैर जनजातीय श्रेणी के लिए 50% और जनजातीय श्रेणी के लिए 75% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को द्वीप समूह का मछुआरा या जनजाति, उनके पास पंजीकृत गैर मोटरीकृत या मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, साथ ही वर्तमान वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों का वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2026-27 के दौरान आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं खरीदने के इच्छुक नगरपालिका और जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन फॉर्म और विस्तृत नियम व शर्तें मत्स्य पालन निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय और नज़दीकी मत्स्य उपकेंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन 30 जून तक मत्स्य क्षेत्रीय कार्यालय या उप केंद्र में जमा किए जा सकते हैं। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान के ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। दक्षिण अंडमान के गुप्तापाड़ा और CDPO कार्यालय डिगलीपुर क्षेत्र में 17 और 19 जून को शिविर लगेगा। इसके अलावा हम्फ्रीगंज में 16 और 17 जून को, वंडूर तथा नील केंद्र में 18 और 19, तुष्णाबाद में 22 और 23, कॉलिनपुर में 24 और 25 जून को शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन विशेष शिविरों के दौरान नागरिकों से आधार से जुड़े कार्यों को पूरा करने को कहा गया है। राष्ट्रीय वायुश्री और ADIP योजना के तहत द्वीप समूह में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए निःशुल्क मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ADIP योजना के लाभार्थियों के पास न्यूनतम 40% या उससे अधिक विकलांगता का वैध UDID कार्ड होना और उनकी मासिक आय 22,500 से कम होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत आने वाले आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक और उनकी मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए। शिविर 22 जून को वृक्षाबाद में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा फ्रारगंज में 23, बाटन में 25, रंगत में 26, मायाबंदर जिला अस्पताल में 27 और 28 जून को डिगलीपुर के चिकित्सा केंद्र पर लगेगा। अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के सहयोग से द्वितीय DGP कप अंडमान एवं निकोबार राज्य स्तरीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन 27 और 28 जून को पुलिस लाइन स्थित ड्रिल हॉल APU श्री विजयपुरम में किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन फिडे शतरंज नियमों के तहत स्विस प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वर्ष 2026-27 का AICF पंजीकरण अनिवार्य होगा। इच्छुक प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 25 जून तक स्पोर्ट्स सेक्शन APU पुलिस लाइन श्री विजयपुरम में जमा कर सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार राज्य ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित 10वीं परिचय मेमोरियल राज्य ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन

23 से 26 जून तक श्री विजयपुरम में किया जाएगा। प्रतियोगिता के तहत विभिन्न आयु वर्ग तथा सीनियर वर्ग पुरुष एवं महिला की स्पर्धाएं शामिल हैं। इन वर्गों में एकल, युगल और मिश्रित युगल मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि अंडर 11 और अंडर 13 वर्ग में एकल एवं युगल स्पर्धाएं आयोजित होगी। बैडमिंटन खिलाड़ियों, शैक्षणिक संस्थानों तथा विभिन्न संगठनों से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। भाग लेने की अंतिम तिथि 22 जून है। अधिक जानकारी के लिए 9434280768 पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय ने आज लाइव योगा सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मत्स्य पालन विभाग केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम लागू कर रहा है। और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान के ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दादू ये कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:15 हुए। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। सबसे पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, परंतु मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है, जिसके कारण समुद्र अशांत रहेगा। इसलिए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वह 17 तारीख तक समुद्र में ना जाए। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

एम वी रानी लक्ष्मी कल 15 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए रवाना होगा। अगले दिन 16 तारीख को सवेरे 7 बजे ये जलयान डिगलीपुर से छूटेगा और उसी बंदरगाह से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। 17 तारीख को सवेरे 7 बजे एम वी जॉली बॉय श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 18 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी रानीचंगा 19 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए छूटेगा। ये जलयान 20 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एम वी भारत सीमा 20 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। अगले दिन 21 तारीख को दोपहर 2 बजे ये जलयान डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाने के लिए जलयान एम वी कैम्बलबे मंगलवार 16 तारीख को सवेरे 8 बजे रवाना होगा। उसी रात 9 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से छूटेगा और श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। एम वी सेंटिनल 18 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। रात 8 बजे ये जलयान लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा।

0: यही जलियान एमवी सेंटिनल 19 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। इस जलियान की वापसी यात्रा अगले दिन 20 तारीख को रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। 21 तारीख को सवेरे 7 बजे जलियान दोबारा श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए छूटेगा और उसी रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। एमवी कालीघाट 19 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार जाएगा। इस जलियान की वापसी अगले दिन 20 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तरासा कचाल ननकौरी होते हुए कैंपबेल बे के लिए 25 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलियान की वापसी 28 तारीख को रात 8:30 पर इन सभी बंदरगाहों से होते हुए कैंपबेल बे से श्री विजयपुरम के लिए
1: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार।
0: ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। अब सुनते हैं जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03192-232-100, 03192-233-077 और 03192-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये थी जन सूचनाएं।

यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। आप सुनते हैं दिल ने फिर याद किया के तहत फिल्मी गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं LOC कारगिल फिल्म का गीत। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, गीत रचना जावेद अख्तर थी और संगीत अनु मलिक का।

0: प्रकृति।
1: इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया, कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: ऐसे नहीं टोकते हैं।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब सुनते हैं युवाणी के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 14 जून है और प्रत्येक वर्ष आज के दिन को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक और सुरक्षित रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आज अपार प्रगति हो चुकी है, लेकिन फिर भी कृत्रिम रक्त का निर्माण संभव नहीं हो पाया है। दुर्घटना, सर्जरी, कैंसर और प्रसव के दौरान अत्यधिक खून बह जाने जैसे आपातकालीन स्थितियों में केवल एक इंसान का खून ही दूसरे इंसान की जान बचा सकता है। ऐसे में रक्तदाताओं द्वारा किया गया रक्तदान सीधे तौर पर किसी को जीवनदान देता है। दोस्तों, रक्तदान महादान केवल एक नारा नहीं बल्कि मानवता की सच्ची सेवा है। एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में आसानी से रक्तदान कर सकता है। विश्व रक्तदाता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा थोड़ा सा रक्त किसी के बुझते हुए जीवन के दीपक को फिर से रोशन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी विचार के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज रविवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

0: दोस्तों, आप भी हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325402325588। हमारा सिटी कोड है 031 92। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो म्यूजिक लवर।
1: जय श्री महाकाल
0: जी, नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं शिवा लोहट, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: जी नमस्कार शिवा जी, बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम देखिए, जैसे कि आप रक्तदान के बारे में बता रही थी मैम।
0: जी बिल्कुल
1: जी, तो रक्तदान मैंने मैम बिल्कुल किया था कल।
0: जी बहुत अच्छी बात है।
1: 20 साल की उम्र से रक्तदान कर रहा हूँ।
0: जी बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। तो
1: हर 6 महीने में हर 3 महीने में मैं करता हूँ
0: जी।
1: और इससे कोई बिजनेस नहीं आती है, लगभग मुझे 6 साल हो चुके हैं मैम।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एक स्वस्थ व्यक्ति

0: हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है, और आपको भी ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके रक्त से एक इंसान का जीवन बच सकता है।
1: और मैंने तो वेदान का भी संकल्प ले रखा है।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं एक मूवी है, कितने दूर कितने पास,
0: जी
1: उसमें एक रूप कुमार राठौर जी की आवाज में गाना रहेगा, हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी, कुछ दोस्तों को याद करना चाहूंगा
0: जी
1: मैम।
0: जी जी जरूर।
1: हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी राजस्थान से, शिमला से रहेंगे राकेश जी, बदरुआ से रहेंगे पुरुषोत्तम कुमार जी, और हमारे अविनाश जी, भगवान सिंह परमार जी, रमेश प्रजापति जी, गजराल लोधी जी, कल्याण सैन जी, और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली मैम आप।
0: जी, तो चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर
1: जय माता दी।
0: जी। जय माता दी। नमस्कार, आपका नाम?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का ना इंटरनल बुगला से बात करा। मैम
0: जी नमस्कार पूरन जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ और यहाँ बारिश हो रही है और अंदर चल रही है आपके उधर।
0: जी, हमारे यहाँ तो मौसम बहुत सुहाना है, तो बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम फिल्म का नाम है हमारा दिल आपकी सांस है और गाने के बोले तुमको देखा तो क्या ये हो गया।
0: जी बहुत ही खूब, तो बताइए आज का दिन कैसा गया आपका?
1: बस मैडम दिन अच्छा गया और आपका कार्यक्रम सुन के और भी अच्छा हो जाता है हमारा दिन।
0: जी ऐसे ही आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए। तो बताइए गीत किन दोस्तों के साथ सुनेंगे?
1: सबसे पहले तो मैडम आप है
0: जी धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी, अभिनाथ जी, रमेश प्रजापति जी, गोल्डी भाई है, अमर सावर, शिवा लोहार है, संगीता जी, आशुतोष देवनाथ, पूर्णिमा मैडम विजयपुरम से और धर्मवीर जी और लाइव कॉलर तमाम श्रोता।
0: जी तो चलिए पूरन जी, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर,
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ
0: जी,
1: दीदी।
0: भगवान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, अभी हमारे इधर बारिश हो रही है तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है
0: जी,
1: दीदी।
0: बारिश का आनंद लेते हुए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है बेखुदी और गाने के बोले मम्मी डैडी मेरी शादी करवा रहे हैं, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
0: जी, तो बताइए आज का दिन कैसा गया आपका?
1: दिन तो बहुत अच्छा गया दीदी, आज कल से ही बारिश चालू है हमारे इधर तो बहुत अच्छा लग रहा है, और दिन भी अच्छा गया दीदी, बहुत अच्छा आनंद आया आज दिन में दीदी।
0: जी, तो वैसे आप करते क्या हैं?
1: खेती किसानी करते हैं, किसान हैं जी।
0: जी, अच्छी बात है। और आज के दिन ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हमारे बहन पूर्णिमा जी हैं त्रिपुरा से, बहन संगीता देवना जी, आशुतोष देवना जी, अविनाश तेली जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, और गंगाधर सावनकर जी, केशव सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी हैं, दिवा लोहट जी हैं, और पूरन जी हैं, राकेश जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, आपको डेलीकेट रहेगा।
0: जी, धन्यवाद। तो चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: मंत्री हैं और पूरण भर मार शिवालौट और भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए।
1: जी तो चलिए राकेश जी, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर,
1: हेलो म्यूजिक
0: नमस्कार
1: लवर, नमस्कार
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मेरी किन से बात हो रही है
1: मैं राकेश बाबू, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: जी? राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। इस वक्त जो है आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं डीटीएच के माध्यम से।
0: जी, हमारा कार्यक्रम यूं ही सुनते रहिए। और बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे गाना सुनना है सपने साजन मूवी का, और
0: जी,
1: गाने की बोल रहे हैं शिकवा करूं या शिकायत करूं।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है, तो बताइए वैसे आप कर क्या रहे हैं?
1: अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और उसके बाद आपके प्रोग्राम समाप्त होगा तो किसी और में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा यही काम होता है, हम श्रोताओं का।
0: जी, हमें खुशी होती है आप सब अपना कीमती समय निकाल कर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी,
0: जी, तो बताइए गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: धन्यवाद।
1: तो सत्तू ने विष्णु कुंडू है, और मोनिका जी हैं, धर्मवीर जी हैं, पूर्णिमा

0: श्रोताओं, अभी आप युवाणी के तहत लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनते हैं दिल्ली से प्रसारित सरकार की 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद।
2: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
3: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
2: जी।
3: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
2: जी।
3: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
2: जी।
3: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस एज लुक है और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
2: जी,
3: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने AI चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी वर फॉलोइंग टाइमलाइन, हमारे 95-97% जहां

0: पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था। वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, AI ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपन्ड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
1: बिल्कुल
0: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233 जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने
1: सर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाएं, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड, रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहां तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसे उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता। क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा होगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नीम एंड पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि साहब ये इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं, यहाँ पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए?
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले।

0: जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर, ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: निश्चय, अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी। आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टुवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउसहोल्ड, एवरी इंडियन हाउसहोल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं, और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक, और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यही शोध किया, यही पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए, और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है। अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत, वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे,
1: बिल्कुल सर,
0: यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे

0: मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नौ कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है। इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे चार अलग अलग हैं, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है। 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है तो खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहाँ 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs.

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पदों हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 11 में पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के तहत दो पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 10 में पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि तथा आवेदन पत्र राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपनी आवेदन वापसी नहीं ले सकते। योग्य अधिकारियों को नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय के सामने केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003 पर भेजने होंगे। ये आवेदन रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 35 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक पहुंच जाने चाहिए। इच्छुक अधिकारी अग्रिम प्रति ईमेल spreadmail.nia@gov.in का द्वारा भी भेज सकते हैं, साथ ही डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद

श्रोताओं, अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक,

0: संधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है,

0: दिशाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: Trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा

0: के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
3: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country

0: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वीएसपी गायत्री सिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: This is Akashvani. In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on Ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आखेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वही संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसिन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। He is known for his expressive and dynamic style of singing. He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
0: श्री जे श्रीराम अपने गायन का आरंभ वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे श्रीराम begins his vocal recital with a composition of वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर in the राग ललिता set to आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ श्याम शास्त्री इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू विलोम चापू ताल।

0: श्री जय श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावरणम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जय श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was Taniyavartanam played on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on Ghatam by Shri Yam Chandrakant.
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसपी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri J. Sri Ram in the broadcast of Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, and was brought to you from the Delhi station of Akashvani.
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, परंतु मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है, जिसके कारण समुद्र अशांत रहेगा। इसलिए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वह 17 तारीख तक समुद्र में ना जाए। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा

अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28:33 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।